0: बिल्कुल, कैरी ऑन कैरी ऑन कैरी ऑन कैरी ऑन एंटरटेनमेंट, कैरी ऑन एंजॉयमेंट, समर जी है उसनों एंजॉय, कैरी ऑन कैरी ऑन। बिल्कुल जी, स्वागत स्वागत स्वागत, सत श्री अकाल आदाब नमस्कार। ट्यून की तो होया देश परदेश प्राइम टाइम रेडियो प्रोग्राम ते मैं थोड़ी अपनी होस्ट दोस्त थोड़ी अपनी मेजबान ग्लोरिया देश परदेश की इस महफिल नो चार चंद लाने वास्ते मैनु इंतजार रहेगा बहुत सारिया कॉलों का। थोड़े साथ सदका ही इस प्रोग्राम नु लेके चलांगे ठीक 4 बजे तक, साथ बनाई रखना। 1:11 हो चले ने, 4 बजे तक थोड़ा ते मेरा खूबसूरत साथ बनया रहेगा। आज है जी सैटरडे आफ्टरनून, नो वेलकम कर रहे हैं एंड कैरी ऑन रखते हैं जॉय एंजॉयमेंट एंटरटेनमेंट नो, क्योंकि बिल्कुल आ सुनियो, क्योंकि सोने असि सिर्फ थोड़े ही दीवाने हैं, तो थोड़ी दीवानगी का असर यह है कि आई बार असि सैटरडे कुछ ना वेखला लैके आने हैं सिर्फ तो सिर्फ थोड़े वास्ते। अज भी कुछ ना वेखला लैके आए हैं लाइव ऑन लोकेशन प्रोग्राम। हाँ जी ठीक सुनिया तुसी, कैनेडा डे सेल, भला कैनेडा डे आने वाला होवे ते सेल सेल सेल ना लगे, वह भी धमाकेदार सेल ना लगे। सो कैनेडा डे जेड़ा सेल है वो शुरू कर दी है जी ग्रैंड होम फर्नीचर वालिया ने। आज से तो साहब खुद पहुंचे हुए ने 6685 टोंकिन रोड मिसिसागा डेरी ते टोंकिन दे इंटरसेक्शन ते। बिगेस्ट सेल ऑफ द ईयर दैट इज कैनेडा डे सेल, डिजाइनर फर्नीचर लोएस्ट प्राइसेस ते फ्री अप्लायंसेस एज गिफ्ट्स। नहीं नहीं विश्वास हो रहा इन्ना सब कुछ वो भी इको सेल दे विच, वेल लेके चल दिए थानू लाइव ऑन लोकेशन। सिद्धू साहब खुद दसेंगे तो मेरा ख्याल है थानू ज्यादा विश्वास हो जाएगा। ओवर टू यू सिद्धू साहब, वेलकम वेलकम वेलकम।
1: सैटरडे का दिन है, सब तो पहला देश प्रदेश प्राइम टाइम रेडियो ऑन कर चुके हो तजेंद्र सिंह सिद्धू सदमा वाले वालों सारे निघा स्वागत। इन्ना सोहना मन अपने खास करके ग्लोरिया जी, इन्ना वधिया बाहर धुप खिली हुई है कि लोग चहल पहल के बच्चे ने, कैनेडा डे आ रहा वो करके सैलीब्रेशन शुरू ने, समर दिया सैलीब्रेशन शुरू ने, लोग बाहर ना बहुत सारे लोगों ने देखा बना के ना भुर्जी भुर्जी आंडे की परौड़े पुरौड़े बना के अजे बाहर जा रहे हैं, बहुत सारे शॉपिंग करने वास्ते आ रहे हैं ग्रैंड फर्नीचर की जिते भी तुम शुभ भी शामा तो असी जी अज सेल लैके आए हैं ग्रैंड फर्नीचर 6685 टॉमकन से पहुंचे हुए हैं तो उतो ते अ जबरदस्त कैनेडा डे सेल दवावे जुड़े रहो ठीक शाम के 4 बजे तक। सारे ही स्रोतियां तजेंद्र सिंह सिद्धू वालों जी आनू जी नाल जुड़ चुके हैं मेरे सुख हो रही आप पहुंचे हुए अपना पूरा सैटअप लैके समॉल स्टूडियो लैके 6685 टॉमकन से ग्रैंड फर्नीचर से
2: अपने घर लेके जा सकते हो। कैनेडा डे स्पेशल जी सेल चल रही है, बहुत सारे परिवार साढ़े को पहुंच रहे हैं, भरवा हुंगारा परिवार का मिल रहा। जे तुसी कित्थे भी प्रोग्राम देश प्रदेश प्राइम टाइम रेडियो नाल जुड़े हुए हो, फर्नीचर की बाइंग करनी चाहते हो, राइट में अज गड्डियां घुमा लो 6085 टोंकन रोड के उपर 6685 टोंकन रोड के उपर। तुम बेडरूम सेट लेना चाहते हो, सोफा सेट लेना चाहते हो, डाइनिंग टेबल लेना चाहते हो, कॉफी टेबल लेना चाहते हो, चाहे बेडरूम सेट लेना चाहते हो, तो सारिया सब तो घट कीमतों के नाल बड़े बड़े अपलायंसेस फ्री तुम अपने घर लेके जा सकते हो। सो पहुंचो जल्दी जल्दी 6085 टोंकन रोड के उपर। सिद्धू साहब डील दें बेडरूम सेट
1: डील दो, पर एक ढोल भी आ रही है
2: बिल्कुल
1: डील दे रहे हैं।
2: बिल्कुल

बाबा जी बिल्कुल बिल्कुल जरूर है। जुत्ती ते सारे तारे की सारे अंबरां दे विचों जिन्ने भी प्लैनेट्स ने वो भी लाके ला दियो जरूर। प्यार मोहब्बत दे विच बंदा की कुछ नहीं कर सकता है ना। जिवें प्यार मोहब्बत दियां तंदां जिहड़ियां थोड़े नाल जुड़ियां होईयां ने ओह दिन ब दिन जदों मजबूत हुंदियां ने सानू भी खिच पैंदी है कि असीं भी मुड़ के थोड़े कोल जाइए ते थोड़े लई कुछ ना कुछ नवेकला लैके आईए। बिल्कुल अज लाइव ऑन लोकेशन साडी टीम पहुंची हुई है जी। सिद्धू साहब खुद पहुंचे हुए ने ग्रांट होम फर्नीचर ते। लोकेशन है 6685 टॉमकिन रोड। उथे पहुंचो जी। ग्रैंड ग्रैंड ग्रैंड सेल लगी हुई है। काफी सारी बचत की जा सकती है। लाइव ऑन लोकेशन का फायदा यह होंगे है कि पॉपअप लोकेशन जुड़िया ने टाइम बीइंग वास्ते जो सेलां लगदिया ने उसका फायदा यही है कि कुछ चंद पैसे जड़े ने बच सकते हैं। फ्री गिफ्ट जड़े ने ज्यादा मिल जाते हैं। सो जाके अज का दिन वधिया है जी। जिवें सिद्धू साहब दस रहे कि तुसी पिकनिक वास्ते तैयारी खिंची हुई है तो जाते लंघते बढ़ते उधरले पासे गेड़ा जरूर लगा के आयो। की पता पसंद आ जाता है कुछ तो उस गिफ्ट जड़े ने वाह कमाल थोड़ा मिल सकते ने जी। सो अपना लक जड़ा है अजमाया जा सकता है अज ग्रैंड फर्नीचर की इस सेल से। अगला नंबर थोड़ा देन जा रही है जी मनु शर्मा होना का कि थोनू पता है कि ओंटारियो दे विच ऑटो इंश्योरेंस विच नवे चेंजेस जड़े ने आ रहे ने। जुलाई तो बाद अपनी पॉलिसी रिन्यू कराउन वाले ड्राइवर्स नू एक्सीडेंट बेनिफिट्स ते अदर कवरेजेस लई नवे फैसले न्यू डिसीजंस करने पास करने पै सकते ने। सो बट द क्वेश्चन इज कि तुसी समझदे हो कि ए बदलाव जड़ा है ए चेंज थोड़े ते थोड़ी फैमिली दी सेफ्टी उत्ते की असर कर सकता है जी। सिर्फ घट प्रीमियम देख के डिसीजन ना लियो। सही कवरेज होना उस तो भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जे थोड़ी ऑटो इंश्योरेंस की रिन्यूअल आने वाली है या तुसी अपने घर की रिन्यूअल चाहते हो बिजनेस इंश्योरेंस लई बेटर कवरेज चाहते हो रेट्स बहुत अच्छे लभ रहे हो तो मनु शर्मा होरां दा नंबर तुसी जरूर लिख के रखो 289-952-9532 289-952-9532 is the number. इस नंबर ते कॉल की जा सकती है ते मनु शर्मा होरां दे नाल गलबात की जा सकती है। लो जी A&J ऑटोमोटिव रिपेयर दा नंबर भी थोड़ा दे दें। कहते कारा रिपेयर करते हैं असी ते ऐसी नवी नवेकली कार बना दें तो पता ही नहीं चलता। प्रोवाइड कर रहे ने नवे समर टायर्स चेंज करते हैं टायर्स व्हील अलाइनमेंट करवानी हो हर तरह का सस्पेंशन का काम करना हो इंजन का काम करवाना हो ब्रेकों का काम करवाना हो एग्जॉस्ट का काम करवाना हो ऑयल चेंज करवाना हो रस्ट प्रूफ करानी हो गड्डी तो बस फिर A&J ऑटोमोटिव रिपेयर। अच्छा जी जे इन्होंने को जाते हो तो एक प्लस पॉइंट यह है कि दे स्पीक बोथ लैंग्वेजेस हिंदी एंड पंजाबी सो थोड़ा कितने भी ऑड नहीं लगेगा कि हाँ जी मैं हूं उत्थे जाके किवें बोलांगा कि मेरे मेरी गड्डी च ए जिहड़ा है दिक्कत आ रही है। कई बार सानू लफ्ज लभदे नहीं है ना तो औखा हो जाता फिर बंदा कहिंदा छड्ड परा मैं इत्थे नहीं जाऊंगा मैं कितें होर जाना तो सारे बेनीफिट्स छड्ड दिंदा। सो A&J ऑटोमोटिव रिपेयर तो तुसी गेड़ा जरूर लगायो 91 हेली रोड बोल्टन हाईवे 50 ते मेफील्ड दा इंटरसैक्शन है जी होम डिपो दे लागे है। नंबर नोट कर लेने 289-503-6726 नाल दी नाल दूजा नंबर 905-857-7596 इज द नंबर। इस नंबर ते कॉल करना बिल्कुल भी ना भुल्यो।

0: जी हाँ, मोटर कार का तो मालूम नहीं, लेकिन आपको आपके बंगले तक पहुँचाएंगे जी यानी मॉर्गेजेस के मयंक भटनागर जी। हर तरह की मॉर्गेजेस में करते हैं स्पेशलाइज, वो रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, प्राइवेट हो, फर्स्ट या सेकंड मॉर्गेजेस, और या फिर आप हैं फर्स्ट टाइम होम बायर। मयंक भटनागर जी 6477022023
1: लाइसेंस नंबर 10394।
2: तंदूरी तंदूरी खाना खाना है ते तंदूरी बॉयज ही जाना है। बड़ा स्वाद वाला फ्लेवर्ड फूड मिलता है, चिकन टिक्का, तंदूरी श्रिंप, तंदूरी फिश, मलाई चाप, तंदूरी मोमोस, ते हां पनीर दी भुर्जी बिल्कुल ना भुलिया जे। लोकेटेड ने 7171 टोरब्रम रोड दे उत्ते, ते दूसरी लोकेशन मैकलोगलन एंड क्वीन ते 905-956-2111 तंदूरी बॉयज।
3: मैनू पता तुहाडी जिंदगी खुशहाल है ते खुशहाल ही सोहनी लगती है, पर जेकर कोई सीरियस एक्सीडेंट हो जाए या फिर किसी तरह की क्रिटिकल इलनेस का हो जाओ शिकार, ता कौन भरेगा तुहाडे घर दी मॉर्गेज, कित्थों आएगी इनकम, किवें चलेगी जिंदगी दी गड्डी अगे। अपनी इंश्योरेंस जरूर करवाओ, कॉल करो उमरप्रीत चावला नू, जिन्हां तों मॉर्गेज इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस करवा सकदे हो, ते नाल ही विजिटर वीजा इंश्योरेंस, सुपर वीजा, ट्रैवल इंश्योरेंस, आरईएसपी ते होर इन्वेस्टमेंट्स लई। हुणे करो कॉल उमरप्रीत चावला नू 6474461616। उमरप्रीत चावला

बात है मित्रों, मरू मरू क्यों करना। बिल्कुल जिंदगी दित्ती है रब ने, सेहत वधिया, सब कुछ वधिया, ते मरू मरू क्यों करना। जिंदगी जियो खुल के, ते गलबात चल रही सी, बंदा उदास मन होवे ते किद्दां उन्नू वधिया खुश मिजाज बनाया जा सकदा, किद्दां उहदे मन नू होर भी दुरुस्त किया जा सकदा। ते कहिंदी है गाने गुणे दे नाल भी, गाने सुन के भी हो सकदा। कहिंदी है जे तुसी वॉक कर सको ना नेचर दे विच, खास करके ते पार्क विच जाके नेचर दे विच वॉक करो, उहदे नाल भी तुहाडा जिहड़ा मन है उह भी बड़ा सही हुंदा, तुहाडी नींद पूरी होवे उहदे नाल भी। ते खास गल जिन्हां दे घर है, जिन्हां ने पैट रखे हुए है, जिन्हां दे घर पैट ने, कहिंदे पैट रखे होण दे नाल बंदे दा मन बड़ा सही हो जांदा। बंदा घर कुत्ता रखिया होवे, बिल्ली रखी होवे, बंदा उहदे नाल खेडदा है, सौ गल्लां बातां इधर उधर करदा है, ते उहदे नाल भी बंदे दा मन बड़ा सही हो जांदा। एक थैरेपी दा ही काम करदे आ घर दे विच जदों पैट्स होण। ते होर बहुत सारियां चीज़ां ने, तुहाडा की कहना है। 905-673-3337 एक ना बड़े ही शानदार मैं देख रहा सी सर्वे दे विच ये चीज़ आई है। कहिंदी है बंदा ना उदास बैठा ते धक्के दे नाल ना उदा ही बस एक जाली समाइल नहीं होंदी, एक फेक समाइल, तुसीं बैठे हो बस समाइल करनी है, तुहाडा उह हासा नहीं आ रहा, बस तुसीं समाइल करनी है। कहिंदे हुंदा की है जिहड़ी जाली समाइल भी हुंदी है ना उहदे नाल तुहाडा मूड बेहतर हो जांदा। आराम नाल बैठे हो बस इदां ही समाइल वाला मूँह बना के देखो, ते उह तुहाडे चेहरे ते तुहानू उहदा अहसास हुंदा, तुहानू पता हुंदा भी हाँ यार मैं इदां ही फेक समाइल कीती है पर इहदे नाल मेरे मूँह दे जिहड़े मसल्स है इहनां दे विच फर्क पै गया। करके देखियो, मैनूं पता कई बंदे हुण इस टाइम फेक समाइल कर रहे होणे ने सुण के, इदां इदां करके शीशे वल देख के, पर फर्क पैंदा। ਇਹ ਵਾਕਈ ਹੀ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਂਦਾ।

0: उनकी स्पेशल देखने के लिए अल्फा ऑप्टिकल डॉट सी ए पे जाइए। आंखों को चेक करवाने के लिए अपॉइंटमेंट के लिए 905-400-5333 पर कॉल कीजिए। 9054567733 अल्फा ऑप्टिकल, योर विजन इज योर बिजनेस।
1: पातशाही दसवें कब्रबाज बेनती चौपाई अमरी करो हाथ है इच्छा पूर्ण होए चित्त की इच्छा अब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतिपारा हमरे दुष्ट समय तुम पाओ साफ बात दे मोहे बचाओ सुखी बसे मानो परिवार जीवत सिख समय कर पारा बुरे छानिज कर दे करे

सबोई उसकी चाचा सके न कोई एक बार जिनको मैं सहारा पाल पोस देता है तुम्हारा इंद्र नाम तिहारों पहा दार दुष्टि लोग तेरा चढ़ के तुम्हें शरण तिहारी आप

0: ग्रहबंधनाय काकिनिकामिनि ग्रहबंधनाय ब्रह्म ग्रहबंधनाय ब्रह्म राक्षस ग्रहबंधनाय चोर ग्रहबंधनाय मारी ग्रहबंधनाय एहि आगच्छ आगच्छ आवेशय आवेशय मम हृदय प्रवेशय प्रवेशय स्फूर स्फूर प्रस्फूर प्रस्फूर सत्यं कथय व्याघ्र मुखबंधन सर्प मुखबंधन राज मुखबंधन नारी मुखबंधन सभा मुखबंधन शत्रु मुखबंधन सर्व मुखबंधन लंका प्रासाद भंजन अमुकं मे वशमानय क्लीं क्लीं क्लीं ह्रीं श्रीं श्रीं राजारं वशमानय श्री ह्रीं क्लीं श्री आकर्षय आकर्षय शत्रून् मर्दय मर्दय मारय मारय चूर्णय चूर्णय खे खे श्री रामचंद्राज्ञया मम कार्य सिद्धिं कुरु कुरु ओम राम ह्रीं रूं रें रूं रः फट स्वाहा विचित्र वीर हनुमत मम सर्व शत्रून् भस्मीकुरु कुरु हन हन हू फट स्वाहा एकादश शतवारं जपित्वा सर्व शत्रून् वशमानयति नान्यथा इति श्री मारुति स्तोत्रं संपूर्णम्।
1: अथ सप्त श्लोकी दुर्गा।

आप सभी श्रोताओं का घर संसार में बहुत ही प्यारा सा स्वागत है, अभिनंदन है। सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय साईं राम। सबसे पहले हम अपने स्पॉन्सर्स का धन्यवाद करते हैं कि वो हमारे प्रोग्राम को सपोर्ट करते हैं और तो तभी हमारी आवाज आप तक पहुंचती है। और आप सभी का धन्यवाद करते हैं तो क्योंकि आप इतने सालों से हमें सपोर्ट करते आ रहे हो, हमारे प्रोग्राम को सुनते आ रहे हो, सराहते आ रहे हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम सबसे पहले परमात्मा का नाम ज्यादा प्ले करते हैं ताकि आपके लिए आपके घर में कार में अच्छी वाइब्स हो जाएं। तो इतनी लंबे समय के लिए आपके लिए ये सारा कुछ हम प्ले करते हैं पॉजिटिव फीलिंग के लिए। गाने तो सभी सुन लेते हैं कहीं ना कहीं पे। तो आइए इसी विचार के साथ प्रोग्राम को लेकर के आगे बढ़ते हैं। आज इस वीकेंड मौसम बहुत अच्छा है, ना बहुत गर्मी है ना बहुत ठंड है। ठंड का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है, बस बहुत ज्यादा गर्मी थी कल थोड़ा तो, लेकिन बाद में बारिश हो गई तो थोड़ा बेहतर हो गया। आज तो ठीक ही है, ना इतनी ज्यादा गर्मी नहीं हुई है, थोड़ी सी बारिश हो गई बीच में, थोड़ा सा धूप भी आ गई। तो आइए इसी को एंजॉय करते रहेंगे। जो भी ऊपर वाला हमें देगा उसका हम धन्यवाद करते हैं और उससे प्रे करते हैं कि इस दुनिया की प्रोटेक्शन के लिए और इस दुनिया में शांति के लिए, फॉर द पीस ऑफ द वर्ल्ड। तो अब अगर आप अपने घर में फ्रिज, स्टोव, वाशर, ड्रायर बढ़िया क्वालिटी का लेना चाहते हो और बढ़िया प्राइस पे लेना चाहते हो तो टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स पे जाइए। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड पर मौजूद है। दूसरी लोकेशन उनकी गोल्फ में है और आप उनकी वीकली मंथली स्पेशल देखने के लिए आप बढ़िया टीवी लेंगे, आउटडोर फर्नीचर लेना है, घर किचन की गैजेट्स लेटेस्ट एडवांस चाहिए, टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स डॉट कॉम पर जाइए। फिर अपने ऑर्डर बुक करने के लिए 905-799-0045 पर कॉल कीजिए। 9057990045 पे आप उनको कॉल कर सकते हैं। तो अब अगर आपने मूविंग करनी है तो HK मूवर्स कनाडा भर में मूव करने के लिए मदद करते हैं, आपके सामान को हिफाजत से पहुंचाते हैं, बहुत सारी उनकी टीम्स हैं। तो अपना ट्रक बुक कर लीजिए मूविंग के लिए 416-524-7604 पे HK मूवर्स को आप कॉल कर सकते हैं। तो अब अगर आपने कोलिजन का काम करवाना है, आप लंदन के इलाके में रहते हैं तो आपके लिए मास्टर कोलिजन डिपो लंदन में गोर रोड पे मौजूद है, तो वहाँ पे आप उनसे उनकी सेवाएं ले सकते हैं। तो मास्टर कोलिजन डिपो डॉट कॉम पर जाइएगा और उनकी सेवाएं लीजिएगा। तो अब अगर आपने किसी किस्म की भी आपको प्रॉपर्टी खरीदनी है किचन वाटर लू गोल्फ में तो आप सेव फ्रेंड को कॉल कीजिए 519-546-1260। आपको खाना ऑर्डर करना है, केटरिंग, लाइव कुकिंग करवानी है तो न्यू इंडिया स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट न्यूली रेनोवेटेड है, क्रेडिट व्यू एंड ब्रिटानिया भी मौजूद है। तो और जानकारी के लिए आप बुकिंग के लिए 905-814-1730 पर कॉल कर सकते हैं न्यू इंडिया स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट। तो आइए अब आपको सुनाते हैं कोई बड़ा प्यारा सा गीत लता जी का गाया हुआ। तो फिर इसी तरह बहुत सारे सिंगर हैं जो उनके गाने हम आपको आपको सुनाने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए फिर आपको जो भूले बिसरे गीत भी हैं वो आपको सुनाने की कोशिश करते हैं ताकि आपको थोड़ा जो हर रोज सुनते हैं थोड़ा आपको जो गोल्डन एज है बहुत खूबसूरत गाने हैं, आपकी जो शाम है वो बढ़िया।

अगर आपके लिए ये कोई और ही जैसे आर्टिस्ट है वो गा रहे हैं, ओरिजिनल लता जी का ही गाना, ओरिजिनल लता जी का ही लगाना चाहती हूँ, तो लेट्स गो टू द सॉन्ग, ओरिजिनल सॉन्ग द सो।

0: कैसे पर्वत हिल जाए, चाहे मेरी जान जाए चाहे मेरा दिल जाए।
1: जी हाँ, चाहे मेरी जान जाए चाहे मेरा दिल जाए, ये फिल्माया गया था लता जी और किशोर कुमार का गाया हुआ गीत है, देवानंद और सीना तमान हीरा पन्ना फिल्म। तो बड़ी बहुत बढ़िया फिल्म है, आपको मौका मिले तो जरूर देखिएगा। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम घर संसार और मैं हूँ आपकी होस्ट मीरा। अब आपको अगर किसी किस्म का फ्रिज स्टोव वॉशर ड्रायर बढ़िया टीवी लेटेस्ट किचन गैजेट्स आउटडोर फर्नीचर लेटेस्ट आपको बारबेक्यू लेना है तो आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स पे जाइए। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए इंटरमॉडल एंड एयरपोर्ट रोड पे मौजूद है, दूसरी लोकेशन उनके ग्वाल में है। तो और जानकारी के लिए स्पेशल्स देखने के लिए टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स.com पर जाइए और फिर अपने ऑर्डर बुक करिएगा 905-749-0045-799-0045 पे आप उनको कॉल कर सकते हैं। तो आप सुन रहे हो प्रोग्राम घर संसार और अब अगर आपने मूव होना है तो आप HK मूवर्स को कॉल कीजिएगा और कनाडा भर में मूव होने में आपकी मदद करते हैं। तो आप उनको कॉल कर लीजिए, अपना ट्रक बुक कर लीजिए 416-524-4164-1652-4607-04 पे आप उनको कॉल कर सकते हैं। तो आइए अब आपको धड़कता भड़कता गीत देसी गर्ल।

0: जी हाँ, एक बार फिर से आपका स्वागत है जी गाना। आपके लिए सुमिति चौहान, विशाल ददलानी उनकी तरफ से गाया गया, और अभिषेक और प्रियंका जॉन इब्राहिम दोस्ताना फिल्म में फिल्माया गया था। बहुत ही बढ़िया गाना है, उम्मीद रखती हूँ आपको जरूर पसंद आ रहा होगा। तो अब आपके लिए जब नई नई शादी होती है तो फिर घूंघट होता है, वो एक एक मजाज होता है कि वो दर्शाया गया है पुराने जमाने से। घूंघट नहीं खोलूंगी सैया तोरे आगे का, तो ये गाना मैं आपको सुनाने वाली हूँ। तो पहले आपको बता दें कि अगर आपने मास्टर कलेक्शन डिपू आपके लिए, आप लंदन में मौजूद हैं, तो अगर आपने किसी किस्म का भी कलेक्शन का काम करवाना है लंदन के आसपास के इलाके में, आप मास्टर कलेक्शन डिपू गोर रोड पे मौजूद है लंदन में, आप वहाँ पे जाइए, उनकी सेवाएं लीजिए। तो मास्टर कलेक्शन डिपू काम पर जाकर आप उनके बारे में और जानकारी लीजिए, फिर उनको कॉल करिएगा और सेवाएं लीजिएगा। और अब अगर आपने ट्रक रिपेयर करवानी है तो बेस्ट ट्रक रिपेयर एंड टायर सेंटर 715 सिस्मत रोड मिसिसागा में मौजूद है। तो और जानकारी के लिए 905-625-0055 पे कॉल कीजिए, 905-625-0055। तो अगर आपने मूव होना है तो HK मूवर्स आप उनको कॉल कीजिए 416-524-7416-524-6704। और फिर आपने किसी किस्म की भी आपको फ्रिज स्टोव वाशर ड्रायर लेटेस्ट आपको टेक्नोलॉजी वाला सारा टीवी सारा सामान लेना है घर का, तो आप टॉप ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स पे जाइए, अपने ऑर्डर बुक कीजिए 905-700-0045 9057990045 टॉप ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स।
1: घूंघट नहीं खोलूंगी

जी हाँ, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है जानकी सर में, और उम्मीद रखती हूँ कि आपको प्रोग्राम पसंद आ रहा होगा, गाने आपको पसंद आ रहे होंगे। तो आप हमारे प्रोग्राम को पसंद आया हो तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा कि आपको प्रोग्राम कैसा लग रहा है। तो आइए अभी काफी अच्छे अच्छे अभी मास्टर स्लीम का प्रोग्राम आपके लिए होने जा रहा है टोरंटो में, और ये आपके लिए 24 जुलाई को होने जा रहा है। तो मास्टर स्लीम को मैं बहुत सालों से जानती हूँ, तो कमाल की गायकी है उनकी, क्लासिकल में गाते हैं, तो आप जरूर जाइएगा और उनको सुनिएगा। और टीवी पे तो हम उनको काफी देखते रहते हैं। तो आइए आपके लिए थोड़ी सी आपके लिए मेरे ख्याल में मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहूँगी, कोई बढ़िया सी बच्चों, आजकल समर है तो बच्चों के लिए अच्छी अच्छी कहानियाँ, जैसे कि जिनमें कुछ मॉरल हो, कुछ उनको सीखने को मिले, ऐसे में एक अच्छी सी कहानी है। तो जैसे कि कभी आप हमेशा जब किसी से मिलते हो, किसी से आगे प्यार बढ़ाते हो, तो आप सबसे पहली उम्मीद आपकी यही होती है कि आपके साथ वो लोग अच्छा बर्ताव करेंगे और आपसे वफादार रहेंगे। यही एक चीज सबसे बड़ी बात होती है किसी भी रिश्ते में। तो कहानी है कि पहले वो बातचीत ऐसे होती है, अमित बार बार साधना को पुकार रहा था, लेकिन साधना उसे अनसुना करके वहां से चली जाती है। अमित हताश और निराश होकर वहीं बैठ जाता है, सड़क के किनारे पटरी पर ना जाने कितनी देर वह बैठा रहता है, सोचता रहता है, फिर किसी तरह हिम्मत जुटाकर साधना को मनाने चल देता है। और इस इधर साधना की जो आंखों में आंसू लिए तेज कदमों से अपने घर की ओर चल दी थी। घर पहुंचकर साधना जी सीधे अपने कमरे में जाकर पलंग पर लेट जाती है, तभी उसकी मम्मी शोभा जी उसके पास आती है। बेटी क्या बात है, बहुत परेशान लग रही है, अमित से लड़ाई हो गई क्या? मम्मी उसका नाम मत लो, मैं अब उससे कभी नहीं मिलूंगी, बहुत बुरा है वो, आज आप जाओ, इस समय मुझे किसी से बात नहीं करनी, साधना ने बोला, और बगैर जवाब का इंतजार करे वह दूसरी और मुंह करके लेट गई। शोभा जी बाहर ड्राइंग रूम में आकर बैठ गई। साधना की परेशानी ने उन्हें भी परेशान कर दिया था, आखिर ऐसी क्या बात थी जो साधना इतनी परेशान है। यही सोचकर शोभा भी इधर उधर टहलने लगती है, तभी डोरबेल बजती है। शोभा जी गेट खोलती है तो सामने अमित खड़ा था। आंटी जी साधना है क्या? शोभा जी ने उसे ड्राइंग रूम में बिठाया और पूछा, बेटा क्या बात हो गई, वो बहुत परेशान है। कुछ नहीं आंटी, बस ऐसे ही गुस्सा हो गई, क्या मैं उससे मिल सकता हूँ? शोभा जी के हाँ कहने पर अमित साधना के कमरे में पहुंच जाता है। अचानक अमित को देखकर साधना उठकर बैठ जाती है और जोर से चिल्लाने लगी, चले जाओ यहाँ से, आज के बाद मुझे मिलने की कोशिश मत करना। अमित बार बार साधना को मनाता रहा, लेकिन वह उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। अमित ने जाते हुए बस इतना ही कहा, साधना आज तुम बहुत गुस्से में हो, लेकिन मेरी बात पर गौर करना, मैंने कुछ गलत नहीं कहा, और हाँ मैं आज के बाद तुमसे कभी नहीं मिलूंगा। अमित के बाहर जाते ही शोभा जी फिर से बोली, ये क्या की बेटी, अमित कितना अच्छा है, तूने उसे बेइज्जत करके घर से निकाल दिया। आप रोती रही, आखिर हुआ क्या था? दरअसल अमित और साधना की मुलाकात एक बस स्टैंड पर हुई थी। अमित अपने घर जा रहा था, रात का समय था, साधना भी उसके गांव के लिए बस के इंतजार में बैठी थी। बस स्टैंड पर मुश्किल से 2-4 लोग होंगे। साधना बार बार घड़ी देख रही थी, अमित उससे वही उसके पास वाले बेंच में बैठा था। साधना अपनी जगह से उठी और अमित के पास जाकर बोली, आपको पता है बुलंदशहर जाने वाली बस कितनी देर में आने आएगी? आपको बुलंदशहर जाना है? अमित ने पूछा तो साधना बोली, हाँ
वहां से आगे गांव में जाना है। अमित ने कहा, मेरी बात मानिए तो वापस चले जाइए, जहाँ बस का कुछ पता नहीं कब आएगी, रात ज्यादा हो रही है, अगर बस भी आ भी गई तो रात को 2 बजे आपके बुलंदशहर उतरेगी, रात में गांव कैसे जाएंगी, सुबह की बस पकड़ लेना। साधना डर गई, मेरा कोई और ठिकाना नहीं है, क्या मैं यहाँ रुक सकती हूँ? अमित ये सुनकर बोला, नहीं यहाँ सेफ नहीं है, आप इस शहर में किसी को नहीं जानती। साधना ने डरते हुए कहा, मैं किसी के बुलाने पर नौकरी के लिए आई थी, उसने मुझसे सारे पैसे ले लिए और नौकरी भी नहीं लगवाई, अब वापस जा रही हूँ। अमित बोला, वैसे तो मैं आपको नहीं जानता, पर अगर ऐसा है तो आप मेरे घर चलिए, सुबह तक रुकिएगा और सुबह बस पकड़ लेना, घबराइए मत, यही पास में मेरा घर है, घर में मम्मी है, आप सुरक्षित रहेंगी। साधना के पास कोई साधन नहीं था, वह अमित के घर चली गई। अगले दिन जब वे जाने लगी तो अमित ने उससे उसकी पढ़ाई के बारे में पूछा और उसे अपने ऑफिस में नौकरी की बात करने के लिए कहा। एक दिन और साधना ने रुकने का फैसला किया। शाम को अमित आया तो उसने बताया कि उसकी कंपनी में नौकरी मिल जाएगी। साधना बहुत खुश हुई, अगले दिन से वह ऑफिस जाने लगी। बाद में उसने किराए पर फ्लैट ले लिया और गांव से अपनी माँ को बुला लिया। धीरे धीरे अमित और साधना एक दूसरे को पसंद करने लगे। साधना का प्रमोशन हो गया, उसकी सैलरी भी अब बढ़ गई थी। साधना एक अच्छे अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गई। मॉडर्न सोसाइटी में उठना बैठना पार्टी करना उसका रोज का काम हो गया। इधर अमित ने अपनी कंपनी छोड़ दी, वह दूसरे शहर में नौकरी करने लगा। धीरे धीरे अमित और साधना में दूरी बढ़ने लगी। अमित के दोस्त उसे बताते कि साधना किसी और लड़के साथ घूमती है, लेकिन अमित इसकी परवाह नहीं करता। धीरे धीरे अमित का भ्रम टूटने लगा। साधना उसको फोन नहीं उठाती थी, मैसेज का जवाब नहीं देती थी। एक दिन अमित अपनी माँ से मिलने आया तो उसने साधना को बाहर मिलने के लिए बुलाया। अमित ने साधना के सामने शादी का प्रस्ताव रखा और दूसरे शहर में उसके साथ चलने के लिए कहा। साधना ने साफ मना कर दिया। अमित ने कहा, मैंने तुम्हारे लिए नौकरी का भी इंतजाम कर लिया है, जितना पैकेज यहाँ मिल रहा है वह उससे अच्छा मिल जाएगा। इतना कहकर अमित और साधना ने कही सुनी हो रही थी। अभी अभी अमित ने कहा, साधना भूलो मत, तुम आज जो कुछ भी हो मेरी वजह से हो, उस समय तुम मेरे प्यार के लिए तरसती थी, आज मेरा फोन भी नहीं उठाती, साफ साफ बताओ बात क्या है। साधना बोली, अमित मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, जीवन में शादी सब कुछ नहीं होती, यहाँ आजादी से जीना ये सब छोड़कर मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती। यह सुनकर अमित को गुस्सा आया और उसने कहा, बात यह है कि तुम किसी और से प्यार करने लगी हो, मैं अब तुम्हें पसंद नहीं हूँ, मेरी दोस्तों ने सब बता दिया है। साधना को बहुत गुस्सा आया और वो अमित को उल्टा सीधा सुनाकर अपने घर आ गई। अमित साधना से बेइज्जत होकर अगले दिन ही अपनी

0: स्टेज। जी हाँ, उनकी स्पेशल्स देखने के लिए अल्फा ऑप्टिकल .ca पे जाइए। आंखों को चेक करवाने के लिए अपॉइंटमेंट के लिए 905-400-5333 पर कॉल कीजिए। 9054567733 अल्फा ऑप्टिकल, योर विजन इज योर बिजनेस।
1: पातशाही दसवें कब्रबाज बेनती चौपाई अमरी करो हाथ है इच्छा पूर्ण होए जिंदगी इच्छा अब चरणन मन रहे तुम्हारा अपना जान करो प्रतिपारा हमरे दुष्ट सदा तुम पाओ साफ बात।

पूरण होए हमारी आशा, दूर भजन की रहे प्यासा, तुम्हें छोड़ कोई अमर न जाओ, जो कर जाओ सो तुमके पाओ, जीवत से कम हमारे भारी है, चुन चुन शक्ल हमारे भारी है, आप बात है मुझे उपर है, मरने काल पाता से निवर है, जो सदा हमारे बच्चा, जीवस तुझ जो करियो रच्छा, राखने हो महरा खड़वारी, सारे पसंद सहाये प्यारी, इन बंद दुश्मन के

कोई उसकी चाह सके न कोई एक बार जिनको है सहारा देता है तुम्हारा इंद्र नाम तिहारो दुष्टि को तेरा सड़क के तुम्हें शरण तिहारी आप।

0: दुआबा वेडिंग स्टोर।
1: यहाँ से आपको ढाका, चुन्नी, मेहंदी, जागो, मिलनी और बारात से डोली तक का सारा सजावट का सामान भी मिलेगा। 30 मेलिनी ड्राइव, यूनिट 9 और 10, ब्रैम्पटन। टेलीफोन 9057999400।

कटिम पातु नभो मणिः द्वादशात्मा कटिम पातु सविता पातु सक्तिनी ऊरु पातु सुरश्रेष्ठो जानुनी पातु भास्करः जंघे मे पातु मार्तांडो गुल्फौ पातु दिशां पतिः पादौ पातु दिनमणिः पातु मित्रोऽखिलं वपुः आदित्य कवचं पुण्यम् अभेद्य वज्रसन्निभम् सर्वरोगभयादिभ्यो उच्यते नात्र संशयः

स्कंदौ मातुशनिश्चयिवो करौ मातु शुभप्रदा वक्षं मातु यमभ्राता कुक्षिं पार्वसिनस्तथा नाभिङ्ग्रहपते पातु मन्दः पातु कठिन्तथा ऊरु महान्तकः पातु यमो जानुयुगं तथा पादौ मन्दगते पातु सर्वाङ्गं पातु पिप्पलः।

सदि दुर्गे स्मृता हरसि प्रीतिमशेषजं तो स्वस्थैः स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि।

आप सभी श्रोताओं का घर संसार में बहुत ही प्यारा सा स्वागत है, अभिनंदन है। सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल आदाब, जय साईं राम। सबसे पहले हम अपने स्पॉन्सर्स का धन्यवाद करते हैं कि वो हमारे प्रोग्राम को सपोर्ट करते हैं और तो तभी हमारी आवाज आप तक पहुंचती है। और आप सभी का धन्यवाद करते हैं तो क्योंकि आप इतने सालों से हमें सपोर्ट करते आ रहे हो, हमारे प्रोग्राम को सुनते आ रहे हो, सराहते आ रहे हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम सबसे पहले परमात्मा का नाम ज्यादा प्ले करते हैं ताकि आपके लिए आपके घर में कार में अच्छी वाइब्स हो जाएं। तो इतनी लंबे समय के लिए आपके लिए ये सारा कुछ हम प्ले करते हैं पॉजिटिव फीलिंग के लिए। गाने तो सभी सुन लेते हैं कहीं ना कहीं पे, तो आइए इसी विचार के साथ प्रोग्राम को लेकर के आगे बढ़ते हैं। आज इस वीकेंड मौसम बहुत अच्छा है, ना बहुत गर्मी है ना बहुत ठंड है। ठंड का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है, बस बहुत ज्यादा गर्मी थी कल थोड़ा तो, लेकिन बाद में बारिश हो गई तो थोड़ा बेहतर हो गया। आज तो ठीक ही है, ना इतनी ज्यादा गर्मी नहीं हुई है, थोड़ी सी बारिश हो गई बीच में, थोड़ा सा धूप भी आ गई। तो आइए इसी को एंजॉय करते रहेंगे। जो भी ऊपर वाला हमें देगा उसका हम धन्यवाद करते हैं और उससे प्रे करते हैं कि इस दुनिया की प्रोटेक्शन के लिए और इस दुनिया में शांति के लिए, फॉर द पीस ऑफ द वर्ल्ड। तो अब अगर आप अपने घर में फ्रिज, स्टोव, वाशर, ड्रायर बढ़िया क्वालिटी का लेना चाहते हो और बढ़िया प्राइस पे लेना चाहते हो तो टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स पे जाइए। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड पर मौजूद है। दूसरी लोकेशन उनकी गोल्फ में है और आप उनकी वीकली मंथली स्पेशल देखने के लिए आप बढ़िया टीवी लेंगे। आउटडोर फर्नीचर लेना है, घर किचन की गैजेट्स लेटेस्ट एडवांस चाहिए, टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स डॉट कॉम पर जाइए। फिर अपने ऑर्डर बुक करने के लिए 905-799-0045 पर कॉल कीजिए, 9057990045 पे आप उनको कॉल कर सकते हैं। तो अब अगर आपने मूविंग करनी है तो HK मूवर्स कनाडा भर में मूव करने के लिए मदद करते हैं, आपके सामान को हिफाजत से पहुंचाते हैं, बहुत सारी उनकी टीम्स हैं। तो अपना ट्रक बुक कर लीजिए मूविंग के लिए 416-524-7604 पे HK मूवर्स को आप कॉल कर सकते हैं। तो अब अगर आपने कोलिजन का काम करवाना है, आप लंदन के इलाके में रहते हैं तो आपके लिए मास्टर कोलिजन डिपो लंदन में गोर रोड पे मौजूद है, तो वहाँ पे आप उनसे उनकी सेवाएं ले सकते हैं। तो मास्टर कोलिजन डिपो डॉट कॉम पर जाइएगा और उनकी सेवाएं लीजिएगा। तो अब अगर आपने किसी किस्म की भी आपको प्रॉपर्टी खरीदनी है किचन वाटरलू गोल्फ में तो आप सेव फ्रेंड को कॉल कीजिए 519-546-1260। आपको खाना ऑर्डर करना है, केटरिंग, लाइव कुकिंग करवानी है तो न्यू इंडिया स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट न्यूली रेनोवेटेड है, क्रेडिट व्यू एंड ब्रिटानिया भी मौजूद है। तो और जानकारी के लिए आप बुकिंग के लिए 905-814-1703 पर कॉल कर सकते हैं, न्यू इंडिया स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट। तो आइए अब आपको सुनाते हैं ये कोई बड़ा प्यारा सा गीत लता जी का गाया हुआ। तो फिर इसी तरह बहुत सारे सिंगर हैं जो उनके गाने हम आपको आपको सुनाने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए फिर आपको जो भूले बिसरे गीत भी हैं वो आपको सुनाने की कोशिश करते हैं ताकि आपको थोड़ा जो हर रोज सुनते हैं थोड़ा आपको जो गोल्डन एज है, बहुत खूबसूरत गाने हैं, आपकी जो शाम है वो बढ़िया।

अगर आपके लिए ये कोई और ही जैसे आर्टिस्ट है वो गा रहे हैं, ओरिजिनल लता जी का ही गाना, ओरिजिनल लता जी का ही लगाना चाहती हूँ, तो लेट्स गो टू द सॉन्ग, ओरिजिनल सॉन्ग द सो।

0: चाहे मेरी जान जाए चाहे मेरा दिल जाए।
1: जी हाँ, चाहे मेरी जान जाए चाहे मेरा दिल जाए, ये फिल्माया गया था लता जी और किशोर कुमार का गाया हुआ गीत है, देवानंद और जीना तमान हीरा पन्ना फिल्म। तो बड़ी बहुत बढ़िया फिल्म है, आपको मौका मिले तो जरूर देखिएगा। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम घर संसार और मैं हूँ आपकी होस्ट मीरा। अब आपको अगर किसी किस्म का फ्रिज स्टोव वॉशर ड्रायर बढ़िया टीवी लेटेस्ट किचन गैजेट्स आउटडोर फर्नीचर लेटेस्ट आपको बारबेक्यू लेना है तो आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स पे जाइए। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए इंटरमॉडल एंड एयरपोर्ट रोड पे मौजूद है, दूसरी लोकेशन उनके ग्वाल्फ में है। तो और जानकारी के लिए स्पेशल्स देखने के लिए टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स.com पर जाइए और फिर अपने ऑर्डर बुक करिएगा 905-749-0045-799-0045 पे आप उनको कॉल कर सकते हैं। तो आप सुन रहे हो प्रोग्राम घर संसार और अब अगर आपने मूव होना है तो आप HK मूवर्स को कॉल कीजिएगा और कनाडा भर में मूव होने में आपकी मदद करते हैं। तो आप उनको कॉल कर लीजिए, अपना ट्रक बुक कर लीजिए 416-524-404-1652-4607-04 पे आप उनको कॉल कर सकते हैं। तो आइए अब आपको धड़कता भड़कता गीत देसी गर्ल।

0: हाँ, एक बार फिर से आपका स्वागत है जी गाना। आपके लिए सुनिधि चौहान, विशाल ददलानी उनकी तरफ से गाया गया, और अभिषेक और प्रियंका जॉन इब्राहिम दोस्ताना फिल्म में फिल्माया गया था। बहुत ही बढ़िया गाना है, उम्मीद रखती हूँ आपको जरूर पसंद आ रहा होगा। तो अब आपके लिए जब नई नई शादी होती है तो फिर घूंघट होता है, वो एक एक मजाज होता है कि वो दर्शाया गया है पुराने जमाने से। घूंघट नहीं खोलूंगी, खोलूंगी सैया तो रे आगे है, तो ये गाना मैं आपको सुनाने वाली हूँ। तो पहले आपको बता दें कि अगर आपने मास्टर म्यूजिशियन दीपू आपके लिए, आप लंदन में मौजूद हैं, तो अगर आपने किसी किस्म का भी प्रिजन का काम करवाना है लंदन के आसपास के इलाके में,
1: These Kumble blue light blocking autofocus.
0: आप मास्टर कलेजन डिपू गोर रोड पे मौजूद है लंदन में, आप वहाँ पे जाइए, उनकी सेवाएं लीजिए। तो मास्टर कलेजन डिपू काम पर जाकर आप उनके बारे में और जानकारी लीजिए, फिर उनको कॉल करिएगा और सेवाएं लीजिएगा। और अब अगर आपने ट्रक रिपेयर करवानी है तो बेस्ट ट्रक रिपेयर एंड टायर सेंटर 1715 सिस्मत रोड मिसिसागा में मौजूद है, तो और जानकारी के लिए 905-625-0055 पे कॉल कीजिए, 905-625-0055। तो अगर आपने मूव होना है तो एचके मूवर्स आप उनको कॉल कीजिए, 416-524-4416-524-6704। और फिर आपने किसी किस्म की भी, आपको फ्रिज स्टोव वाशर ड्रायर लेटेस्ट आपको टेक्नोलॉजी वाला सारा की भी सारा सामान लेना है घर का, तो आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स पे जाइए, अपने ऑर्डर बुक कीजिए 905-799-0045, 905-799-0045, टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स।

0: जी हाँ, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है जानकी सर में, और उम्मीद रखती हूँ कि आपको प्रोग्राम पसंद आ रहा होगा, गाने आपको पसंद आ रहे होंगे। तो आप हमारे प्रोग्राम को पसंद आया हो तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा कि आपको प्रोग्राम कैसा लग रहा है। तो आइए, अभी काफी अच्छे अच्छे अभी मास्टर स्लीम का प्रोग्राम आपके लिए होने जा रहा है टोरंटो में, और ये आपके लिए 24 जुलाई को होने जा रहा है। तो मास्टर स्लीम को मैं बहुत सालों से जानती हूँ, तो कमाल की गायकी है उनकी, क्लासिकल में गाते हैं। तो आप जरूर जाइएगा और उनको सुनिएगा, और टीवी पे तो हम उनको काफी देखते रहते हैं। तो आइए, आपके लिए थोड़ी सी, आपके लिए मेरे ख्याल में मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहूँगी, कोई बढ़िया सी, बच्चों आजकल समर है तो बच्चों के लिए अच्छी अच्छी कहानियाँ, जैसे कि जिनमें कुछ मॉरल हो, कुछ उनको सीखने को मिले, ऐसे में एक अच्छी सी कहानी है। तो जैसे कि कभी आप हमेशा जब किसी से मिलते हो, किसी से आगे प्यार बढ़ाते हो, तो आप सबसे पहली उम्मीद आपकी यही होती है कि आपके साथ वो लोग अच्छा बर्ताव करेंगे और आपसे वफादार रहेंगे। यही एक चीज सबसे बड़ी बात होती है किसी भी रिश्ते में। तो कहानी है कि पहले वो बातचीत ऐसे होती है, अमित बार बार साधना को पुकार रहा था, लेकिन साधना उसे अनसुना करके वहां से चली जाती है। अमित हताश और निराश होकर वहीं बैठ जाता है, सड़क के किनारे पटरी पर ना जाने कितनी देर पर बैठा रहता है, सोचता रहता है। फिर किसी तरह हिम्मत जुटाकर साधना को मनाने चल देता है, और इस इधर साधना की जो आंखों में आंसू लिए तेज कदमों से अपने घर की ओर चल दी थी। घर पहुंचकर साधना थी सीधे अपने कमरे में जाकर पलंग पर लेट जाती है, तभी उसकी मम्मी शोभा जी उसके पास आती है। बेटी, क्या बात है, बहुत परेशान लग रही है, अमित से लड़ाई हो गई क्या? मम्मी, उसका नाम मत लो, मैं अब उससे कभी नहीं मिलूंगी, बहुत बुरा है वो। आज आप जाओ, इस समय मुझे किसी से बात नहीं करनी, साधना ने बोला, और बगैर जवाब का इंतजार करे वह दूसरी ओर मुंह करके लेट गई। शोभा जी बाहर ड्राइंग रूम में आकर बैठ गई। साधना की परेशानी ने उन्हें भी परेशान कर दिया था, आखिर ऐसी क्या बात थी जो साधना इतनी परेशान है। यही सोचकर शोभा भी इधर उधर टहलने लगती है, तभी डोरबेल बजती है। शोभा जी गेट खोलती है तो सामने अमित खड़ा था। आंटी जी, साधना है क्या? शोभा जी ने उसे ड्राइंग रूम में बिठाया और पूछा, बेटा क्या बात हो गई, वो बहुत परेशान है। कुछ नहीं आंटी, बस ऐसे ही गुस्सा हो गई, क्या मैं उससे मिल सकता हूँ? शोभा जी के हाँ कहने पर अमित साधना के कमरे में पहुंच जाता है। अचानक अमित को देखकर साधना उठकर बैठ जाती है और जोर से चिल्लाने लगी, चले जाओ यहाँ से, आज के बाद मुझे मिलने की कोशिश मत करना। अमित बार बार साधना को मनाता रहा, लेकिन वह उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। अमित ने जाते हुए बस इतना ही कहा, साधना आज तुम बहुत गुस्से में हो, लेकिन मेरी बात पर गौर करना, मैंने कुछ गलत नहीं कहा, और हाँ, मैं आज के बाद तुमसे कभी नहीं मिलूंगा। अमित के बाहर जाते ही शोभा जी फिर से बोली, ये क्या की बेटी, अमित कितना अच्छा है, तूने उसे बेइज्जत करके घर से निकाल दिया। आप रोती रही, आखिर हुआ क्या था? दरअसल अमित और साधना की मुलाकात एक बस स्टैंड पर हुई थी। अमित अपने घर जा रहा था, रात का समय था, साधना भी उसके गांव के लिए बस के इंतजार में बैठी थी। बस स्टैंड पर मुश्किल से दो चार लोग होंगे। साधना बार बार घड़ी देख रही थी, अमित उससे वही उसके पास वाले बेंच में बैठा था। साधना अपनी जगह से उठी और अमित के पास जाकर बोली, आपको पता है बुलंदशहर जाने वाली बस कितनी देर में आने आएगी? आपको बुलंदशहर जाना है? अमित ने पूछा तो साधना बोली, हाँ, वहां से आगे गांव में जाना है। अमित ने कहा, मेरी बात मानिए तो वापस चले जाइए, जहाँ बस का कुछ पता नहीं कब आएगी, रात ज्यादा हो रही है। अगर बस भी आ भी गई तो रात को 2 बजे आपके बुलंदशहर उतरेगी। रात में गांव कैसे जाएंगी, सुबह की बस पकड़ लेना। साधना डर गई, मेरा कोई और ठिकाना नहीं है, क्या मैं यहाँ रुक सकती हूँ? अमित ये सुनकर बोला, नहीं, यहाँ सेफ नहीं है, आप इस शहर में किसी को नहीं जानती। साधना ने डरते हुए कहा, मैं किसी के बुलाने पर नौकरी के लिए आई थी, उसने मुझसे सारे पैसे ले लिए और नौकरी भी नहीं लगवाई, अब वापस जा रही हूँ। अमित बोला, वैसे तो मैं आपको नहीं जानता, पर अगर ऐसा है तो आप मेरे घर चलिए, सुबह तक रुकिएगा और सुबह बस पकड़ लेना। घबराइए मत, यहीं पास में मेरा घर है, घर में मम्मी है, आप सुरक्षित रहेंगी। साधना के पास कोई साधन नहीं था, वह अमित के घर चली गई। अगले दिन जब वे जाने लगी तो अमित ने उससे उसकी पढ़ाई के बारे में पूछा और उसे अपने ऑफिस में नौकरी की बात करने के लिए कहा। एक दिन और साधना ने रुकने का फैसला किया। शाम को अमित आया तो उसने बताया कि उसकी कंपनी में नौकरी मिल जाएगी। साधना बहुत खुश हुई, अगले दिन से वह ऑफिस जाने लगी। बाद में उसने किराए पर फ्लैट ले लिया और गांव से अपनी माँ को बुला लिया। धीरे धीरे अमित और साधना एक दूसरे को पसंद करने लगे। साधना का प्रमोशन हो गया, उसकी सैलरी भी अब बढ़ गई थी। साधना एक अच्छे अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गई। मॉडर्न सोसाइटी में उठना बैठना पार्टी करना उसका रोज का काम हो गया। इधर अमित ने अपनी कंपनी छोड़ दी, वह दूसरे शहर में नौकरी करने लगा। धीरे धीरे अमित और साधना में दूरी बढ़ने लगी। अमित के दोस्त उसे बताते कि साधना किसी और लड़के साथ घूमती है, लेकिन अमित इसकी परवाह नहीं करता। धीरे धीरे अमित का भ्रम टूटने लगा। साधना उसको फोन नहीं उठाती थी, मैसेज का जवाब नहीं देती थी। एक दिन अमित अपनी माँ से मिलने आया तो उसने
1: This is AM 530, CHLO AM, serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.

करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही न्यू वीडियो को देखने के लिए आपके अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी दबा दें। और अपकमिंग वीडियोस के टॉपिक के लिए कमेंट बॉक्स

हर नाम लिव लाए, गुरपुरै हर तन पर गासिया, हर कृपा ते वसै मन आए, रहाउ अवगुण काटै।

ना पाया जाए, गुर प्रसाद वसै मन आए, सब में वसै प्रभ को सोए, गुरमति घट प्रगट होए, सहजे जिन प्रभ जान पछाणिया, नानक नाम मिले मन मान्या, सहजे जिन प्रभ जान पछाणिया, नानक

0: राजधानी स्वीट्स, ये सचमुच है स्वाद की राजधानी। खुद आइए, दोस्तों को भी लाइए।
1: ये राजधानी राजधानी राजधानी
0: Rajdhani Sweets and Restaurant, the largest Indian vegetarian restaurant chain in Canada. Find out more at rajdhanisweets.ca.
2: Garnishment, power of sale notice, bank walo paise di mang, unhe hi se anu call karo. Phir to anu koi nahi kar sakega tang. Karza maaf karao. 100% mansik shanti pao. Collection kala to chutkara. Bina vyaj nikiya nikiya kishta. Call karo Canada Consumer Credit Assistance 416-502-3100। कर्जे तो परेशान, असी करांगे काम आसान। 416-502-3100।
3: इमेजिन करो कि तुसी एक घर खरीदना चाहते हो, सोना जिया क्यूट जिया घर, वधिया लोकेशन एंड इन बजट। यू देन कॉल योर फ्रेंड्स, देन दे कॉल देयर फ्रेंड्स एंड दे कॉल यू बैक सेइंग लब दंगे वरी ना कर। तुसी थोड़ा जा वरी कर दियो, समझ नहीं आ रहा हुंदा की करिए किवें करिए। देन सडनली तुसी एक कमर्शियल सुन दे।
4: दिस इज हरजिंदर गिल फ्रॉम रीमैक्स गोल्ड रियल्टी। यू गॉट इट राइट, जस्ट कॉल हिम एंड यू आर सॉर्टेड। लोकेशन, प्रॉपर्टी, बजट, मार्केट सर्च, एवरीथिंग हरजिंदर गिल ते छड़ दवो। तुसी बस मठियाई दा डब्बा तैयार करो। हरजिंदर गिल 647-400-6862 और विजिट teamharjindergill.com। Helping you to fulfill your real estate plans.
5: इश्तिहार है तो व्यापार है, अपना बिजनेस प्रमोट करने लिए संपर्क करो 647-400-6862 G Media Group।

0: फंडिंग दे रही है, गवर्नमेंट कागज देख लेंगे, बात फंडिंग देती है, कागज आप एडिट मार ही सकते हैं, जब गलत काम नहीं करोगे सजा किस बात की मिलेगी।
1: सो ए कोई क्रेडिट चेक नहीं, कोई थब्बा डॉक्यूमेंटा दे नहीं लगता, बस तुसी अप्लाई करना ते गवर्नमेंट ने खाते दे विच 30,000 तो लख डिपेंड पाउन केस टू केस खाते दे विच खासे सारे पैसे पा देने ते तुहानू किन्ने पैसे देने जी असी।
0: हमारी फीस जी फ्लैट है 199 या $499 फीस कम क्यों है, लोग ये भी शक करते हैं हमें फीस कम क्यों है, क्योंकि भाई हम ऑनेस्टी से काम करते हैं, कोई कागज हिल नहीं रहे, कोई सेटिंग नहीं है, कोई अप्रोच नहीं है बैंकों में, सेटिंग मारा बैंकों में सेटिंग करेंगे तब नंबर हिलाने में सेटिंग चाहिए होती है आपको, हमें गवर्नमेंट का सीधा सा कैलकुलेटर है, आप कॉल करते हैं ऑफिस आते हैं आपको दिखाते हैं था आपकी इतनी फंडिंग बनती है आपकी, आपके खाते में आएगा फंडिंग आ जाती है, कोई कैच ही नहीं है इस काम में। तो हमें आजकल असली काम नकली लगता है, नकली काम असली लगता है जिसमें मोटी कमीशन होती है, तो ये गलत चीज है। जैसे गवर्नमेंट बिलियन ऑफ डॉलर्स रिफ्यूजी के अकोमोडेशन पे $1.1 billion लगा दिए गवर्नमेंट ने, उनके हेल्थ केयर पे $1 billion लगा दिए, मतलब 1,000 million, तब तो हमें हैरानी होती नहीं है। जब गवर्नमेंट एजुकेशन में स्पेंड कर रही है, जबकि गवर्नमेंट 2 हफ्ते बाद कट करने वाली है ग्रांट्स में, खत्म कर रही है ग्रांट्स नेक्स्ट एकेडमिक सेशन से, तो आज एनरोल करेंगे ग्रांट आएगी, 2 हफ्ते बाद करेंगे ग्रांट नहीं लोन आएगा, लोन तो हमारे ऊपर पहले से ही है इसलिए पीछे ना रहें, जब गवर्नमेंट इतना पैसा देश के बाहर भेज रही है थोड़ा सा देश में लगा रही है तो उसको मिस ना करें।
1: एंड दोस्तों तुसी कॉल कर लो जी ताडे मन विच, वैसे मैं ट्राई कर रहे हैं वन बाय वन सारे क्वेश्चन क्लीयर किए जाने, पर ताडे मन विच कोई सवाल ने कॉल करो, फ्री कॉल आ, कॉल करने इन्हों ने ओवर द कॉल ही तुम वैल्यूएट करके ते दस देना कि तुम $50,000 एलिजिबल हो, तुम $1,00,000 एलिजिबल हो, इन्होंने तो $199 या $499 चार्ज करने हैं, वह भी उदो जो ते खाते पैसे आ गए। नंबर टू कॉल 437-264-3175 437-264-3175 437-264-3175 ते गलबात कीती जा सकती है। अच्छा भाई जी, डेडलाइन तुसी वार वार कह रहे हो कि डेडलाइन आ रही है, वह डेडलाइन कदों आ, की असी जे अज कॉल करांगे साडे कोल इनफ टाइम हैगा अप्लाई करन दा?
0: आज के टाइम अगर आप कॉल करेंगे आपके पास टाइम है, हमारे पास टाइम है इनफ अप्लाई करने का। देखिए जी, सीधी सी बात है, गवर्नमेंट की पॉलिसी पे बिजनेस डिपेंड करता है, फंडिंग डिपेंड करती है, ऐसा तो है नहीं कि मेरे को किसी तरीके का कोई स्टोर है, आज के अंदर डे पे मैं सेल दे रहा हूँ और 2 हफ्ते बाद वही सेल फिर से दूंगा, ऐसा तो कुछ है नहीं, राइट, क्योंकि ये गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, हमारा प्रोग्राम नहीं है। इसलिए आप डिले करेंगे तो इसमें आपका ही नुकसान है, क्योंकि आपके आस पड़ोस के सारे जितने आपके जानने वाले वो सब एनरोल हो चुके हैं। हम 8 साल से काम कर रहे हैं, 1.5 साल तो में AM530 भी हो गया है, अवेयरनेस करते हुए इतनों को हत्या को तो हमने असिस्ट कर दिया है। तो मतलब एक अजीब बात भी है, अगर लोगों के पैसे, अगर लोग अपने को, लोग दूसरे बंदे को नुकसान तो बता देते हैं, अच्छा नहीं बताते, समझाया, मतलब किसी के खाते फंडिंग आ गई दूसरे को नहीं बताएगा वो कि मेरा काम हो गया चलो, मतलब रेफर भी आप करें इस चीज में, आप औरों का भी भला करें और इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना। कुल अगर आप 5 कॉल लगाएंगे, 3 लोग ऑलरेडी एनरोल हो चुके होंगे, 2 हमसे होंगे, जो कह रहे नहीं हुए वो कुछ झूठ बोल रहे हैं क्योंकि सब एनरोल हो चुके हैं।
1: ते पेंशन वाले बारे एक बार दोबारा दस दो जी, जेडे साडे पेनपरा पेंशन ते ने, जां जेडे कम नहीं कर रहे राइट नाउ, कई बार हो जांदा कि भाई मैं रिटायर ही हो चुके हैं, हजे पेंशन ते भी नहीं आया, रिटायर भी हो चुके, यानी कि उन्होंने इनकम रुक चुकी, उन्होंने बच्चे कमा रहे ने, बच्चे वधिया कमा रहे ने, फिर भी वह हसबेंड वाइफ जेडे ने वह एलिजिबल ने जी?
0: बिल्कुल जी एलिजिबल है, और लाइक देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन बेस ऑफ एज, सेक्स, जेंडर, है ना, इन देश की पॉलिसीज में। तो आप लाइक अगर आपकी फैमिली इनकम कम है, आप पेंशन पे जाए, आप कॉल करें, असेसमेंट कराएं, फैमिली ऑफ 2 को अप टू 45,000 की फंडिंग बन जाती है, जो रिटायर्ड कपल है या फिर जो यंग कपल है, जिसमें से 25,000 तो ग्रांट का पैसा है, जो रेस्ट पोर्शन है वो लोन है 0% पे, और 1.5 साल बाद भी 2.5% साल का ब्याज है। ऐसा लोन आपको कहाँ मिलेगा, जो डेफर भी हो जाता है अगर आपको जॉब नहीं लगी, ऐसा भी कुछ नहीं कि आपको उस फील्ड में जॉब लेनी है, तो कोई कैच है ही नहीं इस काम में। आप कॉल करें, असेसमेंट कराएं, अगर आप फैमिली ऑफ 4 है तो फंडिंग ज्यादा है, फैमिली ऑफ 5 है तो फंडिंग और ज्यादा है, फैमिली साइज पे डिपेंड करती है फंडिंग, जितने ज्यादा बच्चे उतनी ज्यादा फंडिंग, और जितनी कम इनकम है आपकी नोटिस ऑफ असेसमेंट पे उतना ज्यादा फायदा आपको है, आपका फायदा हाथी जितना है, पीछे ना रहें,
1: फाइल लगी हुई है कि मैं एलिजिबल हां?
0: बिल्कुल एलिजिबल है, इनमें इनको 45,000 की फंडिंग मिलेगी, 25,000 उसमें से ग्रांट है, और

0: इनको जो टेक होम नेट ग्रांट बनेगी वो बनेगी 14,500 की, साथ में 17,000 का लोन, टोटल 32,000 की फंडिंग घर लेके जा रहे हैं। अगर बीच में अगर इनका किट भी हो जाता है तो फंडिंग में 10,000 ऐड हो जाएगा।
1: लो भाई गुरसिमरन बधाइयां तुहानू, तुसी भी एलिजिबल हो ते तुसी कॉल कर लो 437-264-3175 437-264-3175। अच्छा भाई लोन भी लोन दी टर्म्स एक बार दोबारा दस दो जी।
0: हाँ जी, सो एग्जांपल लेते हैं फैमिली ऑफ थ्री का, हस्बैंड वाइफ दोनों पढ़ते हैं, उनको 60,000 की फंडिंग आती है, 30,000 ग्रांट है, 30,000 ऑप्शनल लोन है, लोन ऑप्शनल है, नहीं लेना मत लीजिए, ग्रांटी अच्छी बन जाती
1: है, लोन लवांगे, पैसा चाहिए सानू जी, तुसी टर्म्स दसो।
0: हाँ, अब इसमें पहला है कि लाइक लोन 0% है एक साल तक, नंबर वन। नंबर टू, डेढ़ साल बाद लौटाना स्टार्ट करते हैं, किस्ते डेढ़ साल बाद स्टार्ट है, और उसके बाद नंबर थ्री, जब किस्ते स्टार्ट है डेढ़ साल बाद, सिर्फ 2.5% साल का ब्याज है, गाड़ी का भी 8% होता है ब्याज, और लोन चौथी बात, लोन बिना क्रेडिट चेक के अप्रूव होता है, क्रेडिट हिट ही नहीं होता, गवर्नमेंट फंडिंग दे रही है, बैंक नहीं दे रहा आपको यहाँ पे फंडिंग। और सबसे इम्पोर्टेंट बताता हूँ मैं आपको, अब घर की किस्त मेरी मान के चलो 2500 थी, तो 1500 टुवर्ड्स इंटरेस्ट, 1000 टुवर्ड्स प्रिंसिपल, ठीक, इनिशियल ऐसे रहता है 10-15 साल तक
1: जी।
0: इस लोन में ऐसा नहीं है, इस लोन में अगर आपका किस्त बन रही है 162 तो उसमें से $23 ब्याज है महीने का, और वो फ्लैट है, पूरे 10 साल ऐसे ही रहेगा, ओपन लोन है, आप 3 साल बाद भी पे कर सकते हैं, मैंने अपना लोन 3 साल बाद पे कर दिया था। इसमें इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, अगर फैमिली ऑफ फाइव है तो 100,000 की फंडिंग, 50,000 लोन, 50,000 ग्रांट,
1: बहुत अच्छा,
0: फैमिली साइज पे डिपेंड है, आप कॉल करें, आप इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें, आपका ही फायदा, हमारी चीज कितनी है, $199-499 फ्लैट फीस है, कमीशन बेस है ही नहीं कुछ, आप नहीं देंगे तो आपके पड़ोसी दे देंगे, हमें फर्क नहीं पड़ता इतना, आप अपना बेनिफिट करें और कॉल करें और असेसमेंट कराएं।
1: नंबर साझा कर दो,
0: 437-264-3175 437-264-3175 होने, कॉल करो तो एस्टिमेट लो जी, 437-264-3175 ऑफिस ऑफिस आप कल भी आ सकते हैं, 218 एक्सपर्ट बुलेवर्ड, 8 साल से धंधे में है सर, आज शुरू नहीं करा, बाल सफेद होंगे करते हुए, और बाकी लाइक प्रॉपर ऑफिस है, 1,000 square feet का, 8 employee काम करते हैं, कोई कैच नहीं है, आए ऑफिस, कोकोनट वाटर की 200 पड़े हुए हैं हमारे पास बॉटल्स
1: जी। वेरी गुड सर। दोस्तों जे तुसी PR हो, सिटीजन हो, इंग्लिश तुहानू आउंदी आ, ते इनकम तुहाडी 70,000 जां इस तों घट आ, तां बाई उहनां नूं कॉल कर लो, गवर्नमेंट दी जो इह स्कीम आ कि तुसी आप जप नूं एजुकेट करो, ते उहदे लई ग्रांट ते लोन दित्ता जा रिहा, ते इहदा हुण लास्ट कॉल ही आ क्योंकि इह ग्रांट जिहड़ी बंद हो रही आ, सो राइट नाउ कॉल करके तुहाडे मन च जो भी क्वेश्चन आ कॉल करो, ते जे खाते च $1,00,000 आउंदा किहनूं नहीं चंगा लगदा, नागपाल साहब जी नूं कितना देना, $199 जां फिर $499, वह भी जो तुहाडे खाते च पैसे आ गए, आ लो नंबर राइट वे कॉल करो, 437-264-3175 437-264-3175 437-264-3175 437-264-3175 437-264-3175 437-264-3175 बहुत शुक्रिया नागपाल साहब, धन्यवाद,
0: थैंक यू
1: वेरी मच जी। जो रेडियो प्रोग्राम चढ़ती कला के 4 बजे तक तो इस प्रोग्राम का आनंद मान रहे हो, आज तुम लेके चलिए ग्रैंड होम फर्नीचर से, सुखबाई जी लंघे आओ,
2: बहुत शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद प्रोफेसर साहब, बिल्कुल ग्रैंड होम फर्नीचर, ग्रैंड होम फर्नीचर, ग्रैंड होम फर्नीचर का मैसेज दे रहे हैं जी, परिवार तक लास्ट एंड फाइनल कॉल जिहड़ा तुहानूं सद्दा पत्र दे रहे हैं, क्योंकि कैनेडे वाली जे तुसीं प्राइजेस लॉक करनी चाहुंदे हो ते अज असीं रात दे 8 बजे तक तुहाडा इंतजार कर रहे हैं, तुसीं किसी भी तरह की फर्नीचर की बाइंग करनी चाहुंदे हो, बेडरूम सैट लेना चाहुंदे हो, डायनिंग टेबल चाहिए ने, ऑडी वाले डायनिंग टेबल चाहिए ने, मसाजर पावर रिकलाइनर लेना चाहुंदे हो, हार्ड फॉर्म के मैटर चाहिए ने, तो फटाफट ਗੱਡੀਆਂ ਘੁਮਾ ਲਓ, 294 ਵਾਕਰ ਡਰਾਈਵ 294 ਵਾਕਰ ਡਰਾਈਵ 294 ਵਾਕਰ ਡਰਾਈਵ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗ੍ਰੈਂਡ ਹੋਮ ਫਰਨੀਚਰ, ਗ੍ਰੈਂਡ ਹੋਮ ਫਰਨੀਚਰ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸੋਲਿਡ ਵੁੱਡ ਡਾਇਨਿੰਗ ਟੇਬਲ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਸੋਲਿਡ ਵੁੱਡ ਦਾ ਡਾਇਨਿੰਗ ਟੇਬਲ ਲੈਣਾ ਆਪਣੇ ਕਿਚਨ ਦੇ ਲਈ, ਸੋਲਿਡ ਵੁੱਡ ਦਾ ਟੇਬਲ ਤੇ ਨਾਲ 6 ਚੇਅਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੈਦਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਸੋਲਿਡ ਵੁੱਡ ਟੇਬਲ ਪਲੱਸ 6 ਚੇਅਰ ਅੱਜ ਰਾਤ ਦੇ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, $399 ਦਾ, $399 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਲਿਡ ਵੁੱਡ ਦਾ ਟੇਬਲ ਤੇ 6 ਚੇਅਰਾਂ $399 ਦਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਏਅਰ ਫਰਾਇਰ ਤੋਹਫਾ ਲੈਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ, ਰਾਤ ਦੇ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਡੀਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, 294 ਵਾਕਰ ਡਰਾਈਵ 294 ਵਾਕਰ ਡਰਾਈਵ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕੁਈਨ ਐਂਡ ਗੇਟਵੇ ਦੀ ਮੇਨ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ, ਸਰਵਿਸ ਅੰਟਾਰੀਓ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਕੁਈਨ ਵਾਲੇ ਵਾਲਮਟ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਪਰ, 294 ਵਾਕਰ ਡਰਾਈਵ 294 ਵਾਕਡ ਰਾਈਟ ਗ੍ਰੈਂਡ ਹੋਮ ਫਰਨੀਚਰ ਗ੍ਰੈਂਡ ਹੋਮ ਫਰਨੀਚਰ ਪੋਲਰ ਸਾਹਿਬ
1: ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ

0: हाँ हरमन कौरी,
1: हाँ
0: दस फिर
1: मैं देख तेरी इस गल ना सीरियसली हो लग गई हां।
0: हाँ
1: तू एवं कर जेडे प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजर्स नहीं होंदे,
0: प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजर
1: हां मैनेज करना केड़ी केड़ी चीज ओदे विच होनी चाहीदी आ, बच्चियां दी केड़ी केड़ी चीज जेड़ी आ फायदा पहुंचाऊगी समर कैंप दे दौरान, ए सारियां चीजां नूं ऑर्गेनाइज कर दे।
0: ओहो हो
1: हो, तू बन जा।
0: मतलब ये है कि भी आपके बच्चे को जब समर कैंप पे जाना है तो क्या क्या चीज चाहिए है?
1: हां
0: फार्मस चाहिए है, बैग चाहिए, दस्ताने चाहिए, कोटी। ऐसे मेरी गल सुनो, ये काम मैं करूंगा तो मतलब बच्चे की मां की करूंगी फिर?
1: भाई साहब जब बच्चे की मां नहीं करना तो उन्हें तेनू की करने रखना है?
0: यार किदा दी मां हो गई जेड़ा अपने बच्चे दा चा नहीं करन दई ते ओ मेरे गा ऑर्गेनाइजर लभदी फिरूगी उत्थे।
1: हेलो
0: नाले एक मिनट, हेलो एक्सक्यूज मी,
1: हां
0: जेड़ा ओदा मेन ऑर्गेनाइजर ओ किधर गया?
1: चंगा
0: लगा
1: नी
0: मुक दी गल है, जे अगले मेरे को काम कराउणगे कल नूं भाई साहब मेरी कुछ चीज अगले दा जवाक पाड़ दे, बाद अगले पैसे ना देण, फिर कौन जिम्मेवार?
1: एक्चुअली तेरा सिर जरूर पाड़ सकदा, बाकी गल्लां दीआं गल्लां।
2: मेरे रब जी मेरा बिजनेस नहीं है चलता, बाबा जी बड़े पापड़ मेल मेल देख ले ने, कोई गल नहीं बनती, बाबा जी प्रसाद चढ़ाऊंगा, $5 का प्रसाद चढ़ाऊंगा, बाबा जी मेरा बिजनेस चला दियो।
3: ओए मैनू क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं? देव तातले नु कॉल कर, रेडियो ते अपने कारोबार दी एड चला, भाई स्पेशल पैकेज ने उना कोल, फोन कर 416-677-0609 416-677-0609।

0: गल दस, तू अपनी पहली गर्लफ्रेंड को छोड़ दी?
1: ओया पागल सीगी।
0: क्यों?
1: ओनू मैं फोन करना, उन्हें फोन चुकने दी बजाय बादरी जी ने रिंगटोन ते नची जाना।

0: जिंदगी दा कोई भरोसा नहीं, इस करके हाथ दे विच इंश्योरेंस पॉलिसी होनी बहुत जरूरी है।
1: ता इस लई आज ही हरप्रीत सैनी नु मिलो। इना कोल ने स्पेशल लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स विद इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। तुहानू सिर्फ 10 साल या 20 साल लई पे करन दी लोड है, ते इन्दे नाल ही तुसी पूरी लाइफ कवर्ड हो। डिविडेंड्स दे नाल हर साल कैश वैल्यू ग्रो करदी है ते कवरेज इंक्रीज करदी है। वधेरी जानकारी लई कॉल हरप्रीत सैनी 416-817-6500।
2: सुल्तान जी, ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस। देखो वर्ड टीवी पहला आउंदा, अप्लायंसेस बाद च आउंदा।
3: गल सही,
2: गल टेलीविजन दी पहला करनी
3: है। चलो ठीक है,
2: 40 इंच दा टीवी।
3: 40 इंच अज दिने जी $500 तो $199, 300 दी सेविंग।
2: $300 दा डिस्काउंट पाओ $199 दा। ते 55 इंच
3: अज दिने जी $399 दा। $800 प्राइस सी, $399 दा मतलब 400 दी सेविंग,
2: $400 डिस्काउंट। ते उस तो बाद आउंदा जी 65 इंच टीवी।
3: 65 इंच अज दिने जी $699 दा, जदके $1000 सी, एदे ते $300 दी सेविंग,
2: $300 दा डिस्काउंट। फिर आउंदा 75 इंच टेलीविजन।
3: 75 इंच अज आपां दिने जी $899 दा, जदके एदी $1200 प्राइस सीगी, ते एदे ते $300 दी सेविंग,
2: $300 दा डिस्काउंट मिलेगा। फिर चलदे आ इस तो, एदा बाप आ जेहड़ा 85 इंच।
3: 85 इंच बिग स्क्रीन, यस
2: बिग स्क्रीन।
3: 85 इंच बिग स्क्रीन है, एदी $2300 प्राइस सीगी, अज दिने $1599 दा, एदे ते $600 दी सेविंग,
2: $600 डिस्काउंट। फिर सबसे बड़ा बाप है 98 इंच दा टेलीविजन।
3: बिल्कुल,
2: ओदी प्राइस दियो।
3: 98 इंच ते ए $3500 दा सी, अज दिने जी $1999 दा, एदे ते $1500 दी सेविंग,
2: $1500 दा डिस्काउंट। ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस, ब्रैम्पटन टीवी दे मिलेगा 905-450-2828। और खुशखबरी नाल ए वी है, 6 महीने कोई पैसा ही नहीं देना, 6 महीने कोई ब्याज ही नहीं है। थोड़े थोड़े करके दे, कट्ठे दे, मर्जी तुहाडी।
3: देखो जी, $400 महीना दवो, ते 6 महीनिया च 2400 तक दी शॉपिंग कर लो।
2: 3000
3: दी शॉपिंग करन नी, ता $500 महीना करके दे सकदे, क्योंकि कोई इंटरेस्ट नहीं ना,
2: ब्याज कोई नहीं है
3: जी।
2: 905-450-2828 ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस ते। हाँ जी सुल्तान,
3: ते जिदो टीवी एंड अप्लायंसेस दी गल करदे आ, फिर लॉन्ड्री सेक्शन नु मिस ना कर जाना। बहुत सारे कस्टमर है जिन्हां नु टॉप लोड वाशर एंड ड्रायर चाहिदा, बहुत सारियां फैमिलीज है जिन्हां नु फ्रंट लोड वाशर एंड ड्रायर चाहिदा, बहुत सारे ऐसे साडे है जिन्हां नु स्टैक केबल वाशर एंड ड्रायर चाहिदा। साडे ऐसी फैमिलीज, खास तौर ते कई ऐसी मैं देखिया जी, स्पेस इशू है जिथे कल्ला वाशर ही लग सकदा,
2: हाँ जी,
3: ड्रायर लगन नु जगह ही नहीं, क्योंकि उथे 220 वोल्ट होना चाहिए ने ड्रायर लगन लई।
2: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
3: और उथे वेंट भी होना चाहिए, वेंट आउट। सो वन पीस वाशर विद बिल्ट इन ड्रायर तुहानु मिलेगा, जेड़ा के AI टेक्नोलॉजी दे नाल नवी अपडेटेड टेक्नोलॉजी है, जिहदे च तुहानु ड्रायर सैपरेट लाउण दी लोड़ नहीं, 220 वोल्ट दे कनैक्शन दी लोड़ नहीं, वेंट आउट दी लोड़ नहीं। वेंटलैस ड्रायर विद बिल्ट इन वाशर भी तुहानु अज $800 दी सेविंग ना मिलेगा,
2: $800 दा डिस्काउंट मिलेगा।
3: बिल्कुल, $3000 वाला $2199 च $800 डिस्काउंट दे नाल। कैनेडा डे सेल लास्ट वीकेंड है, 1 जुलाई तो 5 जुलाई तक सिगा। सो सिर्फ इस वीकेंड ते ही हुण तुसी इना डिस्काउंट दा फायदा चुक सकना है। 905-450-2828 BramptonAppliances.com वेबसाइट जरूर विजिट कर लेना। 905-450-2828 905-450-2828 जी।